लिंगित, साहित्य रोशन क्रास्तानी, लॉयड रेगो, संगीत विनिल वेगस, गैलेले जावना साथ प्रज्योत डेसा, गीत उड़ी उड़ी।